रहे प्यासा, तुम्हें जाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करी हो रच्छा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बाल दुष्टन के हंता, तुमहु पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, नेव जय जंशन उपजायो, आज अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सुवारी, सबकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बाधे कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरी अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कड़ कड़ के पाठ पढ़ की जान, जब उदकारख करा कर तारा, प्रजा तहत तब देह पारा, जब आकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरहंकार निर्बकार निर्लम्ब।

तेले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोघियन को शय करता, श्री अस्तोजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशित फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अडिल।

कहै चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस फुण तीन के हिज भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चित्रोपखयाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आप जूं दोहरा

हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ बारो, हमरे सब बैरियन संगारो, प्रेथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिदनहना, कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो, चूक होए काबले हो सुधारो, कबे बाच दोहरा

जे जे तुमरे ध्यान को नित उठत्या हैं संता अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा।

तेरा मर्तबा रंग परंगा निगण जापन करतबा जिया दर्जी सबकी जान ला सब की तेरे वास तेरा कर पड़ा तेरे खरे नंद विधाई तुत कर मान।

ज्यो ज्यो चलहे चुबै दुख पावै हे, जम काल सह हे सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोब खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ वड्डा हे।

0: 1550 KRPI Radio te tusi sun rahe si live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib Scott Road Sari.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington.
2: मत विचार आप जी दे समक्ष भेंट करिए पेशतर फतेह प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर कौम दा ते हर अवतारी पुरुष दा कुछ इतिहास होंदा है, कुछ उसके सिद्धांत होंदे ने। सिद्धांत इतिहास किसी भी अवतारी पुरुष नु समझना होवे, विद्वान कहने ने पहलू तीन होंदे ने। प्रथम उसदे बोल की ने, जगत दे प्रति उसका संदेश उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उसदे कर्म की ने। तीसरा उसदे बोलां नाल उसदे कीते होए नाल होया की है, अंजाम की होया। किसी भी अवतारी पुरुष नु वेखने पहलू तीन ने, तीन उदे बोल की ने। सियाने ऐसा कहने 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, 10% उदी बाकी क्रियावां तो अंदाजा लाना पैंदा है। वेखदिया कुछ भी नहीं पता चलता ये मनुख की है। किसी नु भी वेखना वेखण नाल किसी भी मनुख दे प्रति मनुख कोई अंदाजा नहीं ला सकता। ये मूर्ख है, स्याणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, दूरदृष्ट है या जल्दबाज है, वेख के नहीं पता चलता। मनुख दे बोल सब कुछ दस देंदे ने। मनुख दी गुफ्तगु तरजे बयानी 5-10 दिन उसकी संगत करी उसके बोलों दे मनुख दा सारे दा सारा आपा प्रगट हो जाता है। इनू ईरानी सूफी संत सादी इंज

ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦੰਦ ਤੰਗ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਕੋਮਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਦਮ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸੁਨੀਦਮ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ, ਦਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦੰਦ ਤੰਗ, ਤੁਰਾ ਕੀ ਮੁਯੱਸਰ ਸ਼ਬਦ ਈ ਮਕਾਮ, ਕੇ ਬਾਦੋ ਸਤਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਅਸਤ ਜੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਅਗਨੀ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ, ਪਰਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਅੱਗ। ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਲਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੱਲਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਪਰਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਠਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਭਾਵੇਂ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਤਾਤ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਲਾ। ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ? ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਸ। ਪਰਾਏ ਸਾੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਸਾੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੀ। ਜੁਗਨੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਇੰਜ ਦਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੁਗਨੂ ਹੀ ਜੁਗਨੂ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜੁਗਨੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
परवाना दीवे ते परिक्रमा करता है, जुगनू रोशनी दा मुतलाशी है, आशिक है। इस महान शायर ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने और आप दी ग्यातली अर्ज करा कि ऐसा मंदा है कि रूहे जमीन ते दो मनुख ऐसे होए ने जो पूरन सन और नहीं समझे गए, नहीं समझे गए। अफसोस जाहिर करता है किड़े दो मनुख ने, वो कहिंदा एक गुरु नानक एक महात्मा बुद्ध, ये दोवें नहीं समझे गए। दोहां दी उपमा करदा है बांगे दरा दे, बांगे दरा उसका ग्रंथ है। इस दिस दोहां दी महिमा गायन करदा है। महात्मा बुद्ध बारे ते इकबाल इंज कहिंदा है, शमा गौतम जल रही है महफिले अगयार में। महात्मा बुद्ध दा सच दा दीवा झूठियां दी महफिल विच जलिया, झूठे सारे बदल दी तरह इस दीवे ते छा गए, इहदी रोशनी ना जाए, किसे पासे ना जाए। अगयारां दी महफिल विच इस सच दा दीवा जलिया गौतम बुद्ध दा। ते गुरु नानक बारे इंज कहिंदा है, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। अंधिया दी महफिल विच नानक दा दीवा जलिया, अंधिया दी महफिल झूठिया दी महफिल विच गौतम दा दीपक जलिया, अंधिया दी महफिल विच नानक दा दीपक जलिया। ना गौतम समझिया गया, वो कहिंदा ना नानक समझेगा। सच्चाई नू इतना उघाड़ के पेश कीता, इतना स्पष्ट पेश कीता, इतनी रोशनी मनुख दी अखां चों दियां गईयां नहीं समझ चाई। महात्मा बुद्ध दे पैर भारत तो उखड़ गए, बौद्ध धर्म उखड़ गया। चीन, जापान, नेपाल, लाओस, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और इस तरह बर्मा, तिब्बत, भूटान, लंका, ए ते सारे बुद्धिस्ट होए, भारत ना होया। भारतवासियों ने उसके पैर उखाड़ दिते, महात्मा बुद्ध के पैर उखाड़ दिते, हिंदुस्तान विच नहीं टिकन दिता। एक दे पैर देश तो उखाड़ दिते गए, एक बाल कहिंदे एक दे पैर वदन नहीं दिते गए, नानक दे पैर वदन नहीं दिते गए। की आबादी है 1.5 करोड़ की, कहिंदे सिखां की आबादी 550 साल का इतिहास, हजारां कुर्बानियां, इतना वड्डा ज्ञान दा सागर। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े सिद्धांतिक नुक्ते ते इतनी सांझी वालता, मुरली दी तान भी गूंजदी पई है गुरु ग्रंथ साहब दे, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी पई है। बेनमाजा कुत्तिया ते ना भली रीत, इतनी ते ताड़ना मस्जिद चो भी नहीं मिलती होनी जितनी गुरु ग्रंथ साहब तो मिल रही है। ए बेनमाजी कुत्ते, इन्नी वड्डी ताड़ना। बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीत। इत सीधा मुसलमान नू उपदेश है, सानू नहीं, असी 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं जाते, सानू 2 टाइम वास्ते कहा गया। इत सीधी मुसलमान नू उपदेश, ए बेनमाजी कुत्ते, इतनी ताड़ना ते मस्जिद तो भी नहीं मिलती जितनी ताड़ना गुरु ग्रंथ साहब पे कर देने। उठ फरीजा उजू साध, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। जिड़ा सिर खुदा दे अगों झुकदा ही नहीं, इस सिर धर दे नाल होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहते ने। पर ये उपदेश, नमाज पढ़न दा उपदेश ते संदेश गुरु ग्रंथ साहब दे च गूंज रहा, अजान गूंज रही है। अजान सिर्फ नमाज पढ़न वास्ते है ना, ये अजान ही है। पर मुरली दी तान भी बजदी पई है, धन धन ओ राम बैन बाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, धन धन बन खंड बिंदरा बना, जय खेले श्री नारायणा,
धन धन तो माता देव की, जह ग्रह रमैये कमलापति, बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। मुरली दी तान गूंजदी सी मंदरां च, मस्जिद दी अजान गूंजदी मस्जिदां विच। एक ऐसा घर गुरु नानक ने बनाया, मुरली दी तान भी गूंजदी है, मस्जिद दी अजान भी गूंजदी। इतनी सांझी वालता। मैं लफ्ज फिर दोहरावां, जिहड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल तोड़दे ने, वो विचार मनुख नूं खुदा नाल नहीं जोड़ सकदे। जिहड़े विचार मनुख नूं मनुख तों दूर करदे ने, ये विचार मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े नहीं ले जाणगे। जिहड़े विचार बंदे नूं बंदे तों दूर करदे ने, समझ लैणा वो बंदा जिन्हां विचारां करके बंदे नूं दूर कर रहा है, वो खुद भी रब तों दूर हो रहा है। इकबाल कहिंदा है, दो मनुख नहीं समझे गए, गौतम ते नानक। दोहां बारे तशरीह बड़ी सोहनी कीती उसने। कहिंदा है, एक दा दीवा ते झूठियां दी महफिल विच जलिया, एक दा दीवा अंधियां दी महफिल विच जलिया। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी। बारिशे रहमत हुई, पर जमी काबिल न थी। इकबाल गोष्ठी लिखदा है परवाने दी ते जुगनू दी। उपर जुगनू अपनी चमक दे रहा सी, ते थले दीवे दिते परवाना परकरमा पिया करदा सी पतंगा। शायर दा ख्याल, ते पता है शायर की होंदा है, कवि की होंदा है। ये जड़ा ऋषि लफ्ज है ना संस्कृत दा, इहदे अर्थ कवि ने। दो तरह के कवि आते हैं। एक ओ कवि जो पढ़ के सुन के स्टडी करके तुकबंदी करके अक्षरां नूं जोड़ के शायरी पेश करते हैं। एक ओ ने जिन्हां दे अंदरों शायरी इंज निकलती है जिवें पहाड़ां दे सीने चीर के झरने निकलते हैं, बिल्कुल निर्मल जल। उन्हां नूं ऋषि आख्या गया। गुरु नानक अपने आप नूं शायर कहिंदे ने। नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा। जिहड़े तुकबंदी करदे ने, इह हौज़ दा पाणी आउंदा दूजी थां तों इकट्ठा कीता गया, टंकी दा पाणी। मैला भी हो सकदा, गंदा भी हो सकदा। ऐसे शायर कवियां दा चरित्र मलिन भी हो सकदा। पर ऋषि कवि ओ शायर जिवें पहाड़ां दे सीने चीर के झरने निकलते ने, एक गहरे बोल उन्हां दी अंतर आत्मा चो निकलते ने, उन्हां दा अनुभव हुंदा है। संतन की सुन साख साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी, जो वेखदे ने कह देंदे ने। सिर्फ तुकबंदी नहीं कीती। इकबाल कुछ उन्हां ही शायरां दे चों है जो थोड़ा बहुत अनुभव रखदा है। इस वास्ते शायर दी व्याख्या करदिआं आया वो कहिंदा है, मुबत लाए दर्द कोई उजू हो तो रो देती है आंख। कहिंदा कन्नां च दर्द होवे अखां रोंदियां ने, दंदां च दर्द है अखां रोंदियां ने, मत्था पीड़ है या शरीर दे किसे होर अंग दे च दर्द है, जोड़ दुखदे ने, रोंदियां ते अखां ने। शरीर दे सारे जिहड़े उजू ने इंद्रे, इन्हां दी पीड़ा अखां प्रगट करदियां। मुफ्त लाए दर्द कोई उजू हो तो रो देती है आंख, किसका दर्द हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। इकबाल कहिंदा शायर कवि ते अख हुंदा समाज दी संसार दी, वो अख हुंदा। किधरे भी पीड़ है, किधरे भी कोई समस्या है, उहदी अखां चो निकलदी, उहदी अखां चो प्रगट हुंदी है। पतंगे ते परवाने दी गोष्ठी लिखी है इसने, बड़ी गहराइयां नूं छोया इसने। उपर जुगनू दे च चमक ते थले दीवे दी चमक ते कर रहे परवाना परकरमा।
परवाने ने ताना जनी की थी जुगनू थे। इकबाल इंज लिखता है, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। ऐ जुगनू तू मेरी दुनिया तो दूर है, परवाना इंज कह रहे हैं, क्योंकि तेरी अग दे च सोज नहीं है, तपश नहीं है। मैं जिस दीवे दी परिक्रमा कर रहे हैं, सोज है, ये तपश है, ये सेक है, पर तेरी अग ठंडी अग है, भावें चमक है तेरे को, भावें तू भी रोशनी दा आशिक है, पर तेरी रोशनी ठंडी है, तेरी अग ठंडी है, ओदे तपश नहीं है। इस वास्ते जिथे मैं पहुंचे हैं उथे तू नहीं है। परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसोज पे मगरूर है जुगनू। अगों फिर जुगनू बोले, इकबाल लिख देने, फिर जुगनू परवाने नू समझांदा है। जुगनू कहिंदा है, अल्लाह का शुक्र है कि परवाना नहीं मैं, दरयूजा गर आतिश बेगाना नहीं मैं। ठीक है मेरी अग ठंडी सही, पर है ते अपनी, मैं अपनी अग च मस्ता, तू ते दूजियां दे दीवियां ते सड़दा फिरदा, तू ते पराई तात लई फिरदा, तू ते पराए साड़े लई फिरदा, तू ते दूजियां दे दीवियां ते जलदा फिरदा, असी अपनी अग दे च मस्त। खूब चोट कीती है इस शायर ने, बहुत सारे लोग दूजियां दे दीवियां ते सड़दे रहिंदे, पराई अग चुकी फिरदे ने। ते महाराज कहिंदे जिस दे अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, भुल के भी उस मनुख दा भला नहीं हो सकदा, किसदा, जो अपने अंदर पराई तात रखदा है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जिस दे अंदर पराए साड़े होणगे, उहदी सोचनी की होवेगी, मेरे सिर ते भावें पग रवे भावें ना रवे, दूजे दी लैणी चाहीदी। मेरा घर बने भावें ना बने, दूजे दा टहना चाहीदा। मेरे घर मुंडा होवे भावें ना होवे, दूजे दा मरना चाहीदा। मैनू इज्जत मिले भावें ना मिले, दूजे दी बेइज्जती होनी चाहीदी। मेरा नफा होवे भावें ना होवे, दूजे दा नुकसान ते होना ही चाहीदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, ऐसा मनुख अपने लिए खुद दोजक बनांदा है, अपने लिए खुद नरक बनांदा है। सतगुरु कहते ने हिरदे च सारियां लिए भलाई का जज्बा पैदा होया है। मेरे ख्याल रूए जमीन ते इको एक स्थान है गुरु नानक का घर, जिथे सारियां दे भले की अरदास की जाती है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद हद हो गई। एक ही मंदिर है इस तरह का, रूहे जमीन थे। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई, सबको मीत हम आपन कीना, सारे मेरे मित्र ने। हुण मैं अर्ज करा, रामायण दे करता श्री राम दे महान भगत तुलसी, वो कहिंदे ने मित्रता ते उत्थे हो सकदी जिथे छे गुण आपस दे च मेल खान, उंज नहीं हो सकदी। गुरु अंगद देव जी दा एक बड़ा कीमती श्लोक है, नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोसों न्यो, पाणी अंदर लीक द्यो तिसदा थाउ न थें। दोस्ती बराबरी दे तल ते आउंदी है, मित्रता बराबरी दे तल ते आउंदी है। 70 साल दा बुढ़ा ते 5 साल दा बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती, दादे दे पोतरे दा संबंध ते हो सकदा है, मोह ममता दा, मित्रता नहीं होवेगी, दोस्ती नहीं होवेगी। दोस्ती लई बराबरी दा दल चाहिदा है, मित्रता हमेशा बराबरी दे तल ते आउंदी है। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस, अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। एक 5 साल दे बच्चे दी 80 साल दे बुड्ढे नाल की खाक दोस्ती होवेगी, किस तरह होवेगी।
ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਰਧ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਭੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਮੂਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੀ ਲਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੰਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਣ ਕੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੰਤ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਤੁਲਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਹਾਂ ਤਹਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਣ। 6 ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਟਕਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ, ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ, ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲੀ, ਕੋਈ ਦੇਵ ਸਮਾਜੀਏ, ਕੋਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਚ ਆਏ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਚ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੂਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਕਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ? ਤੂੰ ਕਵੀ ਸਨ, ਕਵਿਤਾ ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਨੇ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤੌਨਵੇਂ ਜੋ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਤੁਲਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कोई आम पद्धर दा मनुख नहीं, चोटी दे भगतां दी शुमार होंदा। कैसी सुंदर छब बने भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने वे जो धनश बान होए आत। तो तुलसी कहिंदे ने मित्रता उत्थे होंदी है इष्ट इक होवे, ए नहीं मेरा इष्ट कुछ होर है दूजे दा इष्ट कुछ होर है, मित्रता नहीं होवेगी। मेरी इच्छा कुछ हो रही, दूजे की इच्छा कुछ हो रही, नेड़ता नहीं होगी, इच्छावां टकरा जाणगियां, इष्ट टकरा जाणगे। आसा इष्ट उपासना, तुलसी कहिंदा उपासना का ढंग भी एक होवे, ए नहीं कोई पूजा पाठ करे तो कोई नमाज पढ़े, कोई जप करे तो कोई तप करे, कोई प्राणायाम करे कोई योग साधना साधे, कोई रेचक कुंभक करे कोई नेती दोती दी क्रिया साधे। कहिंदा नहीं, उपासना का ढंग भी एक होवे। दूजा नमाज पिया पढ़ता एक पूजा पिया करता, तुलसी कहिंदे ने मित्रता नहीं होवेगी, उपासना एक नहीं है, इष्ट एक नहीं है, इच्छा एक नहीं है। आसा इष्ट उपासना, खान पान पैरान ते खाने दिच भी सहमति हो गए। खाना हर धर्म ने कुछ खाने नू वर्जित गिने, ए ना खाओ। लंबा चौड़ा खुलासा ना करिए। कुछ साधु भारत दिच ऐसे भी ने जो दूध भी नहीं पींदे, कहिंदे ने ए लिक्विड मास है, ए सॉलिड मास नहीं है लिक्विड मास है, ए लाल मास नहीं है चिट्टा मास है, नहीं पींदे, परहेज करते हैं वो नहीं पींदे, और बेशतर उसनु अमृत मनदे ने दुध नु। गुरबाणी कहंदी है पशु मिले चंगियाईयां खड़खावे अमृत दे, अमृत देंदियां ने गऊआं मज्जां, पर वो कहंदे नहीं ये लिक्विड मास है तरल मास है। एक ठोस मास होंदा एक तरल मास है, कहंदे तरल मास है, आखिर मास का निचोड़ है और की है, नहीं पीते, बड़ा परहेज करते हैं। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहिंदा खाण देच भी सहमति होवे, ए नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत दिंदा इस खाने नो, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना, खान पान पैरान। मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च देच भी शराब पी लेंदे ने, उंज मैनू नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभा दे आंदे ने, क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए वे 10-15 मिनट आके बोलिया, ते मैं उन्हां नूं कह मेरी इंग्लिश बहुत ढिली मठी है, कहण लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दिच रहा होना, अंग्रेजां दे राज दे समय बुजुर्ग है। कहिंदा मैनू हिंदी आउंदी होर बथेरियां नूं आउंदी, तुसीं उर्दू च बोलना हिंदी च बोलना। मैं कहा चलो फिर ठीक है काम चल जाएगा। ये खुले सुभा दे आउंदे ने, इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है करदे ने, पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन, हद हो गई। इस्लाम हराम कहिंदा है, गुरबाणी कहिंदी है जिस जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहिंदा है खाने दिच भी सहमति होवे पीण दिच भी सहमति होवे, ए नहीं एक आखे नहीं ए दुध अमृत है, एक आखे नहीं मास है नहीं पीना, एक मास खाई दा एक मास पीना है, मास पीना भी है मास खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनन देच भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे। ये छे गल्लां आपस देच मेल खान ते मित्रता हो सकती है वरना नहीं। तुलसी दे इस सलोग दे मुताबक ते ए मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया दा खाना इस एक किस तरह करिए, भारत का खाना ही एक नहीं है, बंगाली कुछ होर खाते हैं, असामी कुछ होर खाते हैं, पंजाबियों का होर खाना है, कश्मीरियों का होर है,
ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ 300 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, 4-5 ਜਥੇ ਹੋਰ 4-5 ਵਿਦਵਾਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਣਾਵੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦਾਲ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਲ ਦੇ ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਰਾਠੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨੜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲਗੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਘਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪੀਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਇੱਛਾ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਗੁਪਤ ਜਪਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮੁਗਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਗੁਪਤ ਜਪਿਓ, ਕਾਹੂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਰਕਾ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਹੂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਰਕਾ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੋ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਕਾਹੂ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਗੁਪਤ ਜਪਿਓ, ਕਾਹੂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਰਕਾ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਤੋ, ਕਹੂ ਕੋ ਬਕਾਵ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣ ਕੋ ਪੜਤ ਮਤ, ਕਤਹੂ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਿਦਾਨ ਜਾਨ ਲੇ ਤੋ। ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਵਨ। ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਵੀ ਆਖ, ਤੂੰ ਰਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਆਖ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਹਾਂ ਚਾਨਣ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਿਕਤਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ
ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੇ ਝਗੜਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਯਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੇਤੀ ਦੋਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮ ਆਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਲਓ, ਕਰਤਾਰ ਆਖ ਲਓ, ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਨੇਕਤਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ, ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤੋ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਾਰਿਏ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਾ ਸਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾ ਸਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਵੇ। ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ। ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਸੰਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦੁਆਰਕਾ, ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਵੀਹ ਪਿੰਡ ਆਉਣੇ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ,
अंदर दा सत भी कोल सी। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नारा लाया, अगर सता सतवादी दे हाथ च नहीं होवेगी तो सता जुलम करेगी। सताधारी अपने पैरां थले मजलूमां नूं रौंदेगा लिताड़ेगा, सता सतवादी दे हाथ च होवे। संत ही सिपाही होवे, सिपाही संत होवे, वो अंदरों अत्यंत कोमल होवे ताकि इंसाफ कर सके, वो अंदरों अत्यंत मिठास नाल भरिया होवे ताकि उहदे अंदर वितकरे ना होन। सदा सत नाल टकरा गई और आदकाल तो टकरांदी रही। मिस्र दी सदा मंसूर नाल टकरा गई सी। इतना वड्डा फकीर विचारा सोली ते चढ़े। सरमद सूफी संत है, दिल्ली दियां गलियां दे नगन घूमदा सी। इनूं पकड़ के औरंगजेब दे दरबार विच पेश कीता गया, नंगा क्यों घूमदा है? भावें उसने सीधा ही कह दिता सी औरंगजेब नूं, तू दस मैं केड़ी चीज नूं ढकां, तैनू मेरे विच क्रोध दिखाई देंदा है, लोभ दिखाई देंदा है, वासना दिखाई देंदी है, दुश्मनी दिखाई देंदी है, औगुणा नूं ढकना पैंदा, गुणा नूं ढकण दी लोड़ नहीं। गंदगी नूं ढकना पैंदा, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। और बड़ी करारी चोट की थी, तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, मैं नंगा भी ढकया होया। भावें तू बड़े कीमती कपड़े पाए ने, पर भरावां दा कतल ते उन्हां दा खून तेरे कपड़ियां च भी बाहर आ रहा है। तू प्यो नूं जिहड़ा तड़पा तड़पा के मारिया है, ये जुलम तेरे कपड़ियां तो भी बाहर आ रहा है। इंसाफ दया प्रेम मेरी नग्नता तो भी प्रगट हो रहा है, मैं नंगा भी ढकया होया। तू ढकया होया भी नंगा है, पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास और यानी दाद। दो नुकते थोड़े सामने रखा। ये रहिंदा सी जिथे अजकल दिल्ली दे गुरुद्वारा मजनू टिल्ला है, इस टिल्ले दे कोल इहदी निक्की जिही झुग्गी सी ते चारों पासे इसने वाड़ लाई हुई सी, उहदे च रहिंदा सी। शिकार खेड के एक दिन औरंगजेब वापस आ रहा है ते झुग्गी दे चों आवाज आ रही सी, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। हैरान होया, आवाज दे खिच बदली सी। दिल दी गहराई चो अगर वाहिगुरु शब्द निकले उहदे च कुछ कशिश होवेगी। एवें जबान कह रही है ठीक है, कन्ना तक जाएगा, गहरा नहीं उतरेगा। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाणा है, उहनूं अपनियां जड़ां पाताल विच लै जाणियां पैणगियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकदा, वह उच्चा भी नहीं उठ सकता। जिहड़ी गल गहरी नहीं आउंदी, वह बुलंद भी नहीं आउंदी, उच्ची भी नहीं आउंदी। बड़ी दिल दी गहराइयां चों अल्लाह हो निकल रहा सी। बाहर बड़ियां दे हिरदियां नूं दो पैंदी सी। औरंगजेब कहिंदा इत्थे कौन रहिंदा है? शिकार खेड के वापस आ रहा सी नाल अहलकार सिपाही। हाथ जोड़ के अहलकार ने कहा, जहां पना इत्थे उही नगन फकीर, नंगा रहण वाला पागल सरमद ओ है, ईरानी फकीर, ईरान तो आया सी। घोड़े तो उतरिया, धो पई खिच पई, दिल दी गहराई चो निकले धुन ते मुतासर ना करे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। चारों पासे वाड़ सी, अहलकारा ने वाड़ नो एक पासे कीता, जैसे औरंगजेब अंदर दाखल होया, एक कुत्ता सी बड़ा भारी ते खून खार जिया टुट के पै गया। औरंगजेब लिबास फाड़ दिता, अहलकारा सिपाहियां ने बचाया। कुत्ते दे भौंकण दी आवाज, सिपाहियां दा शोर शराबा, अंदर बैठा उस समाधि दे च मस्ती च, उहदी समाधि भंग होई, उहने अखां खोलियां, बाहर आया। की देखदा वकत दा हुकमरान? गरजदी होई आवाज दे नाल
औरंगजेब ने आख्या दरे दरवेश रां दरबाना बायत। दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिदा, तू क्यों पाल के रखे? तेरे घर ते सुराई भी कोई नहीं, भांडा भी कोई नहीं, कि किसी ने चोर ने चुनाना है, कुछ भी नहीं। तू इतना खूनखार कुत्ता पाल के रखे है, देख मेरे सारे कपड़े फाड़ देते, अजय मेरा जिस्म बच गया। दरे दरवेश रां दरबाना बायत। दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिदा। वो फकीर बड़ा बेपरवासी बोल पिया बबायद तासगे दुनिया न आयद। दरवेशां दे बूए ते भी कुत्ता चाहिदा ताकि तेरे वर्गे दुनियादार कुत्ते ना आवन, मैं इस वासे पाल के रखे। हुक्म कीता सवेरे सूरज निकलन तो पहले इसनु कतल कर दो। इहदी कबर जामा मस्जिद दे कोल बणी होई, हुण रोज लोकी चादरां चढ़ाते ने, फुल चढ़ाते ने, उदों ते कतल कर दिता। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो भारत दा पहला विद्या मंत्री बनया, आपनु पता होगा 1947 दे एजुकेशनल मिनिस्टर इसनु बनाया गया सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्हें एक किताब लिखी है बड़ी सोहनी, हिंद के उलमा व उकराम, हिंदुस्तान दे जेड़े बड़े बड़े संत साधु होए ने उन्हां दे उत्ते लिखी, हिंद के उलमा व अकराम। उदे च सरमद बारे दो पंक्तियां मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया। वो कहिंदा ऐ औरंगजेब, हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबले माफ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उदी लेखनी है। हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबले माफ है। मुसलमान सी ये सरमद, नमाज पढ़दा सी, अल्लाह हो जपदा सी, कुरान दी आयतां वजद विच पढ़दा सी, कपड़े नहीं पहनदा सी, और बेपरवासी बेपरवास सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। फकीर दा सुभा ही आंदा बेपरवाह, जो बेपरवाह नहीं मुथाज है, मुथाज मनुख संत नहीं आंदा, बेपरवाह आंदा है। ये बेपरवाही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत दा वायस बनी। आप ते हुक्म सादर कीता गया भई 2.5 लाख सोने दिया मोरां जरवाने वजों देव। अल्लाह दे संबंध जितने बोल ने गुरु ग्रंथ साहब दे कढ़ो। और इस तो इलावा कुछ मुस्लिम फकीर भटक के थोड़े को लाम देने मनाई करो। साईं मियां मीर जैसे कवि, जमाल हुसैन जैसे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सतगुर खामोश रहे, कहने लगे एक भी ये बोल मनन वाला नहीं है। साडे कोल सोना बथेरा है, पर धर्म मंदरां दी तामीर वास्ते, गरीबां दी उसारी वास्ते, धर्म प्रचार वास्ते तेरे खजाना भरन वास्ते नहीं। सिद्ध ये बेपरवाही शहादत दा कारण बने। शहादत थोड़ा अरबी दा लफ्ज है, सच दी गवाही देनी, शहादत गवाही। सच दे पक्ष च कोई खड़ा होवे ते मसला जानदा होवे। दानी ते बहुत ने, कोई धन दा दान कर लेगा, कोई अन्न दा दान कर लेगा, कोई कपड़े दान दे देवेगा, कोई जमीन और जायदाद सच दी खातर, गुरु दी खातर। पर कोई अपनी जान कुर्बान करे सच दी खातर, सच दे पक्ष च खड़ा हो जाए। इस वास्ते रूहे जमीन ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत महान शहादत है। सच दे पक्ष दे खड़े हो गए ना, जान भी जांदी है ते जावे, असी जान निशावर करदे। इस वास्ते भारत दे सिख जगत शहीदां दा सरताज कहंदी है। इस शहीदां दे सरताज ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। आप कहंदे ने
मैं सारिया नो मित्र बना लिया, कोई मैनु दुश्मन समझदा ते समझे, सब मेरे मित्र ने। सारा जहान मेरा अपना है, सबको अमीत हम अपने की ना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जिथे हरिमंदर साहब दी आपने तामीर कराई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी संपादना भी उन्होंने की। और इस तो इलावा जिहड़ा महान कम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा, जगह जगह धर्मशाले बनाने, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाने, भाई गुरदास नूं तदे ही कहना पिया, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। हर घर गुरुद्वारा बने, असीं ते पिट उठदे हां किते दो गुरुद्वारे तीन गुरुद्वारे भी बन जांदे दिल तंग हो जांदा, टकराओ लड़ो झगड़ो, बंदे ते बंदे नाल झगड़दे ने, गुरुद्वारे भी गुरुद्वारे नाल झगड़दे ने। घर घर अंदर धर्मशाल, हर घर गुरुद्वारा होवे, हर घर धर्मशाल होवे, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। इतनी मैं अर्ज कर दें, तंग दिल मनुख मनुख ते की ओ कुछ भी नहीं है, उन्हों सिख कहना तो बनता ही नहीं। तंग दिल मनुख सिख नहीं हो सकता, सिख तो इतना विशाल होवे, मुरली दी तान भी गूंजे, मस्जिद दी अजान भी गूंजे, पर सिख इतना तंग दिल होवे ये बाणी भी ना बर्दाश्त कर सके, इन्नी तंग दिली आ जाए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे हिरदे नू वेखना पएगा, इतना विशाल जिगरा, महान मंदिर बनाना है, नहीं एक मुसलमान रखे, पत्थर मुसलमान रखे, मियां मीर ने पत्थर रखे, ये नहीं सोचा सिख रखे। जिहड़ा वाकई सिख धर्म नू मनदा है, पूर्ण तौर ते मनदा है, ते जिसका नाम भी उस ढंग दा होवे, ओ पत्थर रखे, नहीं मियां मीर उस तो नहीं पत्थर रखवाया। दरबार साहब दास कोई गालबन 20-25 दिन हर साल कथा करता है, गुरु रामदास जी महाराज के गुरुपुरब तो लेके दिवाली तक 40-42 साल विच मेरा कदी नागा नहीं पाया, मैं हर साल उत्थे ही हुंना। साईं मियां मीर दी अंश चो 4-5 मुसलमान कश्मीर तो आउंदे ने, हर साल मिलदे ने, मैनू मिलदे ने, और आके कहंदे ने मस्कीन जी सानू माण है, असीं उस मंदिर दे पुजारियां ते मत्था टेकन वास्ते आया जिस दी बुनियाद साडे बुजुर्गां ने रखी सी, साईं मियां मीर ने रखी सी, माण करदे ने, वो माण करदे ने, हैन मुसलमान दाड़ियां रखी होईयां, नमाज पढ़दे ने। और गुरु रामदास जी महाराज दे पुरब दे दिनां च आउंदे ने, उहनां दिनां च आउंदे ने, अक्तूबर दे महीने च उह वी आउंदे ने, मत्था टेकदे ने। तो रूहे जमीन ते सांझी वालता दा इस तरह दा केंद्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया, आप दी इतिहास तो ते आप दे बोलां तो शिक्षा की मिलती है। ओ महान है मनुख जो सच दी खातर कुर्बानी देवे, उस दा धन महान है जो सच वासे धन खर्च करे, अन खर्च करदा है, लेकिन ओ सब तो सिरमौर है जो सच दी खातर अपनी जान कुर्बान करता है, जान निछावर करता है। तुसी शहादत दिहाड़ा मना रहे हो, कुछ ना कुछ सच दे मार्ग ते कुर्बान करना ही पैंदा, कुर्बान कीते बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होंदा। और हकीकत है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, सच दी नहीं आउंदी, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, वक्ती तौर ते जित आउंदी है, वक्ती तौर ते झूठी कह कई जित गई। 14 साल दा राम नू बनवास, सिंघासन राज तिलक मेरे बच्चे नू भरत नू, जित ते हो गई वक्ती तौर ते, 14 साल लई जाना पिया। वक्ती तौर ते कंस दी जित है, उन्हें देवकी ते वासदेव नू जेल विच पाया, 6 बच्चे देवकी दे मार दिते ने उसने, 7वें कृष्ण दा जन्म होया है। राज घराने दा ए बच्चा, फिर गुजर इसनू पालदे ने, जसोदा पालदी है ग्वालन सी, नंद बाबा पालदा ग्वाला सी, मां बाप ते देवकी ते वासदेव ने, पर नकली मां बाप कोल पलदा पिया।
ਰਾਜ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ।

सिंहासन ते बैठा है, फरमान पे करदा है। वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। अज सारे जहान विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार है, पर झूठ दी मजार ते तो कोई दीवा जलाण वाला भी नहीं। साहिब रहमत करन पुरब मनांदे होया सच दे धारनी बन गए, और महान संदेश गुरु अर्जन देव जी दा पराई तात हिरदे च नहीं रखने, दूसरे दा बुरा भी नहीं मंगना। फिर गुरु अर्जन देव जी दा संदेश जेड़े विचार मनुख नूं मनुख तो दूर करदे ने, ओ विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर कर देणगे। जो मनुख मनुखां दे नेड़े नहीं होना चाहुंदा, वह मनुख परमात्मा दे नेड़े हो ही नहीं सकेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान संदेश कुछ बुद्धि अनुसार समय की गति मुख रखदे होया थोड़े सामने रखे, साहिबां दे मूल सिद्धांतिक नुक्ते साडे हिरदे विच वसन ते पुरब मनाया होया सफल होवे। पुल चुक दी शमा इत्थे ही समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रखना है। और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना ले क्योंकि आप धार्मिक मंदिर दे च बैठे हैं कि महान धर्म दे सागर धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ियां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछान। कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु ते एक वादस करोड़ां च कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे च है, नारायण जिदी समझ दे च है। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है। ना गुरु दी अजमत दा पता, ना गुरु दी महानता दा पता, ना गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमरती दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमृति दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या है याद करो, चेते करो। संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावां शब्दां नूं, असीं ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। भुल गए, भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहते हैं दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी, इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इदा व्यवहार दसदा है, इदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ए वी अर्ज करां, जन्म बच्चे दी तरह हुंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां बुढ़िया दी तरह जन्म होया। चीन दे च कहिंदे ने लाओत से जिहड़ा संत होया कहिंदे ने बुढ़िया दी तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृष्ट सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदिया ही ब्रह्म ज्ञान। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया। तें जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, ते गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, उपर तखत चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: जो दिन आज है सदा ए नहीं रहना, दिना विच गर्दश है। कबीर नामदेव जी दा शायद कबीर जी दा एक शब्द है नामदेव जी दा, कबू खीर खांड घ्यो ना पावे। कदी तुसी देखदे हो परमात्मा इन्ना कोई दिंदा है कि बंदे दा चित नहीं करता। वो खंड नू कबीर साहब नामदेव कहिंदे आ घ्यो नू शक्कर नू जिन्ने कीमती पकवान ने उन्हां नू ठुड्डे मारदा है नहीं। ते महाराज कहिंदे आ कदी परमात्मा दी इह वी समर्था जे इहो जी खेड वरता दिंदा है, बंदा झोली पा के लोकां दबुवे अगे खलो के रोटियां मंगदा है कि मैनूं रोटी मिल जाए। कमाल दी गल, कईआं नूं रोटी नहीं मिलदी, वो ठुड्डे मार देंदे ने।

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी।
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश,
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख,
1: सा सा सिमर हो गोबिंद,
0: मन अंतर की उतरे चिंद,
1: आस अनित त्याग हो त्रंग,
0: संत जना के तुहर मन मंग,
1: आप छोड़ बेनती करो,
0: सात संग अग्न सागर तरहो,
1: हर धन के भर ले हो भंडार,
0: नानक गुर पूरे नमस्कार,
1: खेम कुशल सहज आनंद,
0: सात संग पर परमानंद,
1: नरक निवार उधारो जियो,
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो,
1: चित चितव हो नारायण एक,
0: एक रूप जाके रंग अनेक,
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल,
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल,
1: सिमर सिमर नाम बारंबार,
0: नानक जी का यह आधार,
1: उत्तम श्लोक साध के बचन,
0: अमलीक लाल यह रतन,
1: सुनत कमाप होत उदहार,
0: आप त्रैलोक कै निस्तार,
1: सफल जीवन सफलता का संग,
0: जाके मन लागा हर रंग,
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै,
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै,
1: रखे गोपाल महांत कै माथे,
0: नानक उदरे तिन कै साथे,
1: शरण जोग सुन सरनी आए,
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए,
1: मिट गए बैर भय सबरीन,
0: अमृत नाम साध संग लैन,
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव,
0: पूर्ण होई सेवक की सेव,
1: आज जंजाल विकार के रहते,
0: राम नाम सुन रसना कहते,
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी,
0: नानक नभी खेप हमारी,
1: प्राप्ति उस्त करो संत मीत,
0: सावधान एकाग्र चीत,
1: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम,
0: जिस मन बसे सो होत निधान,
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए,
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए,
1: सब ते ऊच पाए स्थान,
0: गौर न होवे आवन जान,
1: हर तन खाट चले जन सोए,
0: नानक जिसे प्राप्त होए,
1: खेम शांत रिद नव निध,
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान,
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान,
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश,
0: सबके मत सगल ते उदास,
1: सुंदर चतुर तत् का बेता,
0: समदर्शी एक दृष्टिता,
1: ए पल तिस जन कै मुख भने,
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने,
1: एहो निधान जपै मन कोए,
0: सब जुग मैता की गत होए,
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी,
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी,
1: सगल मतांत केवल हर नाम,
0: मोहित भगत कै मन विश्राम,
1: कोट अपराध साध संग मिटै,
0: संत कृपा ते जमते छुटै,
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए,
0: साध शरण नानक ते आए,
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत,
0: जन आवे हर प्रभ चीत,
1: जन्म मरणता का दुख निवार,
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार,
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी,
0: एक नाम मन माहि समानी,
1: दुख रोग बिन से भय भरम,
0: साध नाम निर्मलता के कर्म,
1: सबसे ऊंचता की शोभा बनी,
0: नानक एह गुण नाम।

चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर

नदर करे जे अपने तन दि सतगुर पाया। ए जीव पुत जन्म भरंग मैं ता सतगुर सब सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया।

0: मत पिटाए यो मत पिटाए अन साडा फिटा मत पिटावे मत पिटाए अन साडा फिटा गण फिटा फेड़ करेन मन जूठा चुली परेन कहो नानक सच हैया सच होवै ता सच पाईऐ
1: पौड़ चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़िया आपे ही क्रम कराएंदा वडो वडावर मेदिनी सिरे

अकाल मूरत अजूनी सै भंग प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै त्रिपौन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत प्रभ दाता दातार पर्यो जाचक एक सरना मिले दान संतरेन जेह लग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्स मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पहुन में जन नानक गुरपार ब्रह्म

0: मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नापतोल विच नहीं आई। कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है। बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी। व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने, व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ये बेचैन क्यों है? तृष्णालु है। ये तृष्णालु क्यों है? इहदे अंदर संकल्प ने। संकल्प क्यों ने? इहदे अंदर इच्छावां ने। इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है, कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां होईयां नदियां दे, ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने। ये किन्नी मील लंबी है, इहदा पाट किन्ना चौड़ा है, ये गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर दिता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखिया है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है? जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने? रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास देच असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुई होन, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे, मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी? इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी? पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले, किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन देच पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती देच पक्की जिंदगी किसनू मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: रेडियो स्टेशन 1550 AM गुरबाणी सैगमेंट तुहाडे तक। स्वर्गवासी सरदार अजीत सिंह दी बाद स्वर्गवासी माता सुरिंदर कौर बाद दी याद दे विच 1550 AM तों गुरबाणी प्रचार कीता जांदा है। 1550 रेडियो दे उत्ते गुरबाणी दे किसे भी प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन वास्ते 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 18 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 23 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ, ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ ਲਵੋ 18.98 ਦਾ। ਬੀਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 49 ਪਾਉਂਡ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 58 ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ।
2: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ।

प्रबल अहंकार क्यों है? जितना शक्तिशाली मनुख होवेगा, जितना ताकतवर मनुख होवेगा, जितना चोटी का धनाढ़ होवेगा, अहंकार ही ना होवे। कवि तुलसी कहते हैं करामात है, ऐसो को जन्मे ओ जग माई, प्रभता पाए जास मद नाई। कहिंदा ऐसा केड़ा माई दा लाल जमे, प्रभता कोल होवे, ताकत कोल होवे, संपदा कोल होवे, ते अहंकारी ना होवे। ऐसो को जन्मे ओ जग माई, कवि तुलसी। ऐसा केड़ा माई दा लाल है, ऐसो को जन्मे ओ जग माई, प्रभता पाए जास मद नाई। अहंकारी तो अहंकारी मनुख भी नहीं कबूल करेगा, मैं अहंकारी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं लोभी हूं, बेईमान हूं। यह गुरु नु दसना पैंदा है, यह पैगंबरां नु दसना पैंदा है। तेरे अंदर सच्चे नाम दी भुख नहीं, तेरा मन रोगी है। भुख दा ना लगना रोग दी अलामत है। भूखे खावत लाज ना आवे, भुखे नु स्वाद बड़ा आंदा है। रुखी बुरकी च भी स्वाद आ जाएगा, अंदर भुख जाग पै, वाहेगुरु आखण दा रस बन जांदा है, वाहेगुरु आखण दा स्वाद बन जांदा है। और जद वाहेगुरु आखण दे च रस आण लग पवे, समझ लेना इस बंदे दा मन तंदुरुस्त हो गया। जिन्ने चिर तक बाणी दे पाठ दा रस नहीं आ रहा, कीर्तन सुनन दा रस नहीं आ रहा, लोकी कहिंदे ते ने आनंद आ रहा है, नहीं मैं ऐसा नहीं महसूस करता। हो सकता है मैं गलत समझे होवे, कोई सुरीले कंठ नू रस समझ लेंदा है, कोई सुरताल नू रस समझ लेंदा है, शब्द नू रस कोई विरला ही समझदा है। गुरु सिख आशिक शब्द दे, जिस दिन शब्द रस बन जांदा है जिंदगी बदल जांदी है। जिन्ने चिर तक सुरताल आवाज रस बने होया है, ये रस भी बनेगा, बेरस भी हो जाएगा। एको ही तरह का सुरताल जे दो तीन दफा चार दफा सुनने का मौका मिल जाए तो ओही स्रोता कह देगा नहीं है रागी कुछ भी नहीं है, ओही सुर ओही तार। जे किते शब्द नाल जुड़ जाता तो भावे शब्द ओही है, नवे तो नवा रस बनेगा। साहेब मेरा नीत नवा, शब्द कदी पुराना नहीं होता। जितनी गहराई नाल सुनदा जाएगा, नवे तो नवा रस बनता जाएगा, नवे तो नवा आनंद बनता जाएगा। पर ते सुर ताल नू सुनदा रहा, कंठ नू सुनदा रहा, शब्द नू ते सुने ही। इस वास्ते सुर ताल ते पुराने हो जांदे ने, धुना ते पुरानियां हो जांदियां ने, कंठ ते पुराने हो जांदे ने। मैं फिर अर्ज करा, स्वाद नहीं आ रहा शब्द का, अजे भुख नहीं पैदा हो। वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस नहीं बन रहा, अजे भुख नहीं पैदा हो। ये भुख पैदा होवे, मन तंदुरुस्त होवे। श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, निर्मल कर्म केड़ा है? साहिब कहते हर को नाम जप, यही श्रेष्ठ धर्म है। हर को नाम जप, यही निर्मल कर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। इस जप दिया कुछ स्टेजा ने विद्वाना ने बयान कीतिया ने, कुछ बुद्धि अनुसार मैं कल थोड़े सामने इन्हां नू खोलण दी कोशिश करांगा। फिर परसों तो एक लड़ीवार विचार आप जी दे सामने रखांगे। ये जो प्रकरण रखे है सतगुर रहमत करन बख्शिश करन, मैं कल इस नू संपूर्ण कर दें इहदियां स्टेजां, ताकि थानू ये पता चल जाए साडा कीता होया जप कित्थे तक पहुंचे। एक नुक्ता होर भी सुनना, सुनदे हां। एक मनुख कहिंदा है रोटी कमांदियां कमांदियां थक गए। कोई ऐसा भी कहिंदा है पकांदियां पकांदियां थक गए। थानू कोई भी नहीं मिलेगा जिहड़ा आखे खांदियां खांदियां थक गए। खाण नाल थकेवा लह जांदा है, भुख मिट जांदी है, रजेवा नसीब हो जांदा है। पकाण दा थकेवा कमाण दा थकेवा लै जांदा है, सफुरती मिल जांदी, सफुरती मिल जांदी। कमाणा औखा है,

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां दी फिक्र करो, दोहें पासे दी फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया है, मन भी उसका दिता होया है, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर दी भी फिक्र करो, अंदर दी भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन दी परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनू परम आनंद दी प्राप्ति होवे, प्रभु दी प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बार मुखी हो जा, फिर अंतर मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जांदा है अंदर जांदा है, लेकिन गुरमत दा भी ए संदेश, गुरु नानक देव जी दी ए गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसे अवतारी पुरुष दी गल नू पूर्ण तौर ते समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन है। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बार मुखी रहिंदे ने, अंदर दी फिक्र नहीं करदे। हुण विद्वान इंज कहिंदे ने, बार दी यात्रा हंकार दी यात्रा है। अगर ये अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर दी सारी यात्रा हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी यात्रा है। एक हंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। हंकारी मनुख, प्रबल हंकारी मनुख एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वो समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। एक मासूम दो तीन साल दे बच्चे दे सामने मनुख अपने हंकार नू प्रगट नहीं कर सकता, चलदा ही नहीं, वो समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, ओदे सामने भी हंकार नहीं चलता, उथे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नू समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नू समझदा है पर उथे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटियां नू लभेगा, छोटियां नू, उथे उसकी तृप्ति आउंदी है, या वध तो वध दूसरियां नू छोटा मन्नेगा, मन्नेगा, हर पक तो छोटा समझेगा, मन्नेगा। उदी हंकार दी तृप्ति इसे दी, बार दी यात्रा हंकार दी यात्रा। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख दा हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार दी खातर करदा, कदी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहिंदे ने, मेरियां भी अखां ने, संसार दियां भी अखां ने, 90% कम ते मैं लोकां दी अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ने। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनूं वेखण। हंकार ए चाहंदा है नौ खंड पृथ्वी दे च मैं जाने आ जावां। महाराज कहिंदे नवां खंडां विच जाणी है, नाल चले सब कोई। सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मन्नन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जान देवन। सारा संसार जानदा होवे ते सारा संसार झुके भी। हंकार दी ए मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी तृप्त नहीं हो सकता। सदा हमेशा कोई ना कोई उस तो अगे होवेगा,
जे ए धन विच अगे होवेगा ते कोई सेहत दे तंदुरुस्ती च अगे होवेगा, ते जे तंदुरुस्ती विच अगे है ते कला विच ज्ञान विच पिछे पिछे होवेगा, कोई इस तो अगे होवेगा। ते जे ए कला ते ज्ञान विच अगे ते कोई स्वप्न विच इस तो अगे होवेगा, सुंदरता विच इस तो अगे होवेगा, किसे ना किसे पख विच हर मनुख दे कोलों कोई ना कोई अगे होवेगा। मनुख हर पहलू विच अगे नहीं हो सकता, अज तक कोई इस तरह का मनुख होया ही नहीं जो हर पहलू विच अगे होवे। ए भी मैं अर्ज कर दे किसे ना किसे च पछड़े होया होवेगा, कला विच अगे होवेगा, शरीरक बल विच पछड़े होया होवेगा, तंदुरुस्ती दे पछड़िया होगा, स्वप्न दे पछड़िया होगा, ताकत बाहु बल राजनीति दे या धन संपदा दे पछड़िया होगा। हर पक्ष दे मनुख अगे नहीं होंदा, हंकार हर पक्ष दे अगे होना चाहता है। बड़ी चोट लगती है उसनों जद किसी पहलू च उस नालों कोई अगे होवे, हंकारी दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, छोटे मासूम बच्चे दे सामने मनुख दा हंकार नहीं चलता, क्योंकि समझदा ही नहीं हंकार की होंदा। समर्थ शक्तिशाली दे सामने भी हंकार नहीं चलता, क्योंकि मनदा नहीं है, उत्थे हंकार चलता नहीं है। इस वास्ते हंकारी अक्सर अपने ते छोटियां नूं लभेगा या दूसरियां नूं छोटा समझेगा। हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है, निर्माणता दी यात्रा है। मिठत नेमी नानका गुण चंगे आईयां तत, विनम्रता सारे गुणां दा निचोड़ है, गुरु नानक इंज कहते हैं। जिवें तिल ने ते फिर तिलां दा तेल है, बदाम ने ते फिर बदामां दा रोगन है, सारे गुण ने ते फिर गुणा दा तत है कि विनम्रता निर्माणता। मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईयां तत। एक आलम इंज कहिंदा है, जुबां खोलेंगे मुझ पर बद जुबां क्या बदशुवारी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाक सार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे, मैं ते खुद ही पछड़े आया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज, सगल चरण की एहो मन राला, हे प्रभु मैं ते सारियां दे चरणां दी खाक, सारियां दे चरणां दी धोड़। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक वाक शब्द है, ते लंगर आग दा पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु उत्थे कहिंदे ने, बदबख्त हमचों बखील गाफल, बेनजर बेबाक, हे प्रभु मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रालब्ध चंगी नहीं है। क्यों तो नहीं मिलिया, किया होया जे बहुत कुछ मिलिया, तो नहीं मिलिया। बद वक्त हम चो बखील, चुगल खोर भी हां, निंदा भी करदा, हंकारी मनुख नूं निंदा दे च रस मिलदा है। जिन्हों उंज छोटा नहीं कर सकदा, निंदा नाल छोटा करन दी कोशिश करदा है। निंदा की आउंदी है, गल नूं घटा के बयान करना, खुशामद की यह गल नूं वधा के बयान करना, दोवें झूठ ने, दोहां नाल मन मैला हुंदा है, दोहां नाल मनुख परमात्मा तो दूर हुंदा है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज रोकदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे,
खोजे पद निर्बाना, पर जन नानक एव खेल कठन है कि नहु गुरुमुख जाना। औखी खेड है कि मनुख निंदा भी ना करे ते उपमा भी ना करे, या मनुख घटा के गल करदा है या वधा के करदा है। अक्सर वैरी दी गल मनुख घटा के करदा है, अंदर ईरखा है, जलन है, ते मनुख घटा के गल करदा है, निंदा करदा है। अंदर कोई लालसा ते लोभ है तो मनुख खुशामद करदा है, वधा के गल करदा है। फुल नूं कंढा कह देना ये निंदा है, गल घटा के बयान कीती गई है। पर कंडे नूं फुल कह देना ये खुशामद है, गल वधा के बयान कीती गई है। इन्हां दोहां नाल मन मैला हुंदा है। फुल नूं भावें कंडा कहिए भावें कंडे नूं फुल कह दईए। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप में थोड़े सामने रखते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहन लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उना नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नु भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं आ एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नो चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बार मुखी मनुख सी, बार मनुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नूं मैं की करना, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष दे च खड़ी होवेगी। अर्जुन आया चरणा ते मथा टेकया, श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया, दुर्योधन ने मंग की थी सी ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू, फौज ते उसने मंग ली है, सिपाही ते उसने मन सेना ते उसने मंग ली है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जुन हाथ जोड़ के कहिंदा है भगवान जे ए अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी थानू ही मंगना सी, थोड़ी सेना नू नहीं मंगना सी, तुसी मेरे पक्ष दे च खड़े हो गए तो फिर हार भी थोड़ी जित भी थोड़ी, अपना ते कुछ भी नहीं, निश्चिंत असी ते बेफिक्र हो जावांगे।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।